दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

राजा दशरथ ने कैकेयी को कई प्रकार से समझाया, अनुनय विनय की कि वो विवेक से सोच समझकर दूसरा वर मांगे, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन नहीं रह पाएगा। किंतु राजा के कोमल वचन कैकेयी की क्रोधाग्नि में मात्र आहुति का काम कर रहे हैं। रानी की एक ही टेक है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया नहीं चलेगी। या तो जो वर मैंने मांगा है वो दे, नहीं तो ना ही करके अपयश के भागी बने। सवेरा होते ही यदि राम मुनिवेश धारण करके वन को नहीं जाते तो हे राजन, निश्चय जानिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। इतना कहकर कैकेयी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे क्रोध की नदी उमड़ी हो। दो वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का हठ उस नदी की तीव्र धारा है, मंथरा की प्रेरणा भंवर है, और क्रोध रूपी वो नदी राजा दशरथ को मूल रूप से ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की ओर ले चली है। राजा ने समझ लिया कि स्त्री के रूप में मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है। उन्होंने कैकेयी के चरण पकड़कर विनती की कि वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी न बने, वो उनका मस्तक मांग ले जो वो शीघ्र दे देंगे, राम के विरह में उन्हें न मारें। किंतु राजा की गुहार व्यर्थ हुई। उन्होंने जान लिया कि रोग असाध्य है। अत्यंत आर्तवाणी से हा राम कहकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं हरिओम शरण के स्वर में ये भक्ति गीत।

हरि ओम शरण के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति गीत। अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में ये सुंदर सा भक्ति गीत।

आप सुन रहे हैं श्रोता आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। और अब इस कार्यक्रम का ये अगला भजन हम आपको सुनवा रहे हैं ओम व्यास के स्वर में।

ओम व्यास और साथियों के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण अब हमें पे समाप्त करते हैं।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर बाद सुबह के 6:45 में सुनेंगे आप सुगम संगीत में मृदुला भट्टाचार्य दास के स्वर में गाए चंद गीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा आप सुनेंगे सुबह के 7:00। समाचार प्रभात में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे सुबह के 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुबह के 8:40 पर। 8:45 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक में। आज कुरमाली लोकगीत संतोष महतो और साथियों के स्वर में। 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। विष्णु प्रभाकर और साहित्यकार उमा शंकर जोशी पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही सुनेंगे स्वरोजगार के कई आयाम पर कुछ जानकारी की बातें। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन के साथ हम होंगे आपके साथ सुबह के 9:30 पर।

सुबह 10 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे NCERT। पूर्वाहन के 10:30 पर हम आपको शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। हमारी शाम की सभा आरंभ होगी शाम के 5:02 पर कार्यक्रम विवरण के साथ। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुनेंगे शाम के 5:05 पर। आज सुनेंगे एक ही संगीतकार को। कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। फूलगोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी और उन्नत किस्म पर चर्चा होगी। साथ ही आप लोकगीतों का आनंद लेंगे इस कार्यक्रम में। मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुनेंगे शाम के 6:00। शाम के 6:02 पर आप सुनेंगे बांग्ला कार्यक्रम 7 रात। सांथाली कार्यक्रम सुनेंगे शाम के 6:30 पर। ग्रामीण विकास में बैंक की भूमिका पर इस आप सुनेंगे एक वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर जयराम क्षमा करें वार्ताकार होंगे श्री जयराम टूडू। शाम के 6:55 पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां से 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। शाम 7:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। संसद समीक्षा सुन सकते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि के 8:00। 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। समाचार संध्या में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि के 8:45 पर। रात्रि 9:15 पर हम आपको पुनः शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। 9:30 पर आप सुनेंगे संसद के समक्ष मुद्दे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। उसके बाद आप सुनेंगे रात्रि 10:00 संसद में प्रश्नकाल का रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात्रि के 10:00। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि के 11:00 क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे और सभा समापन की घोषणा हम करेंगे रात्रि के 11:10 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मृदुला भट्टाचार्य दास के गाए चंद गीत।

मृदुला भट्टाचार्य दास के गाए इस गीत के साथ ही श्रोताओं, सुगम संगीत का कार्यक्रम अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं।

आत्मसम्मान की रक्षा हमारा सबसे पहला धर्म और अधिकार है। मुंशी प्रेमचंद के इस अनमोल वचन के साथ ही कार्यक्रम जोहार चाईबासा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ राधा, नमस्कार। इस कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में, जिसे हमने लिया है फिल्म आदमी और इंसान से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
4: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मेरे बेटा क्रांति बेसरा आले वगे नेहर में ना बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहा कि हम बोले रुड़ तो बन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
5: वरना मंगलोर आए को गांव बड़गड़ा आड़की थाना जंगल गया है तो आऊ का कहाँ मैंने आए वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
6: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हतो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए है
7: तुम लोग बुरा मिसिंग काम सोए अनिता तमसा भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में नहीं है या पाप में रियल तपाप में रियल वाह बेटा मिका
8: अन्याम तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्याम हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा दुनिया में बुरी ने बागिया तोड़ के दुनिया से यार फिर कलो पुलिस कलो में लड़ाई चलाओ तमे दुर्गम गया तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
9: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिने रो जिता हुरा रे मिने रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिटा हुरेन का अली आया न तुम ते ना मिल आप ही लेता ना।
3: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
10: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम जुहार चायवासा में। भूत बंगला, आइए अब इस फिल्म का गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में।

परख। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत से सजाया था सलील चौधरी ने। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लगान का गीत, अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों के स्वर में। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है ए आर रहमान ने।

लगान इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अर्का याग्निक उदित नारायण और साथियों के स्वर में। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत से सजाया था एआर रहमान ने। आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जुहार चायबासा। भाभी इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीत है चित्र गुप्त के।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम जोहार चायवासा में, और अब हम सुनते हैं फिल्म अनजाने का ये गीत, सुरेश वाडेकर, साधना सरगम और साथियों की आवाज़ों में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनजाने का गीत, सुरेश वाडेकर और साधना सरगम के स्वर में। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत से सजाया था राजेश रोशन ने। और अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है आर.जी. वर्मन के। फिल्म का नाम है बेताब।

सुजाता। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले के स्वर में। मजरू के लिखे गीत को संगीत से सजाया था एस टी बर्मन ने। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम जोहार चायवासा यहीं पे संपन्न होता है। अब राधा को दीजिए इजाज़त। अगले कार्यक्रमों में पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अक्षर भारत में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की।